0: जाता है
1: नहीं।
0: तो फिर
2: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम था लड़का लड़की। 1966 रिलीज ये फिल्म रही थी। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। और अब जिस बात की आशा थी, इंतजार था, वो पल आ गए, वो आ गए हैं।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी रचना आवारा फिल्म से साथियों अभी आपने सुनी। 1951 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों एक समय था जब पहेलियां बहुत प्रचलन में थी। पहेली विधा से मस्तिष्क की कसरत होती है और ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि अब भी पहेलियां प्रचलन में है लेकिन बहुत कम। फिल्म जगत में पहेली आधारित गीत भी सजे हैं, उन्हीं में से एक गीत रचना ये भी।

आशा भोसले और साथियों की आवाजों से सजी रचना मेरा नाम जोकर फिल्म से आप सुन रही हैं। 1970 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
4: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
3: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
5: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा

0: रहा है, वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
1: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर

0: गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123341 01 01 23 7 1 7 1 7। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोक सत्य की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights potential of India's youth in solving global challenges while remaining anchored in the ancient cultural roots. Delhi government to distribute 1300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. One person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. U.S. President Donald Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine with immediate effect. 139 people killed.

है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य

0: श्रीकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया INS मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अब है हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल हैं। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते। युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे

0: देर तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
1: इतना तो पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर सार्थक इंडिया की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
2: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
4: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
3: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है।

0: राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडियन ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक

दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुत चर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं विमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं।
परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती

0: सावित्री बाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्री बाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवानोन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
6: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
7: ठीक है। बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के
1: किंतु एक देश के
0: विविध रूप रंग हैं
1: भारत के अंग हैं
0: भारतीय वेश एक
1: हम अनेक किंतु एक
0: बोलियां हजार हैं
1: टोलियां हजार हैं
0: कंठ भी अनेक हैं
1: राग भी अनेक हैं
0: किंतु गीत बोल एक
1: हम अनेक किंतु एक
0: एक मातृभूमि है
1: एक पितृभूमि है
0: एक भारतीय हम
1: चल रहे मिला कदम
0: लक्ष्य के समक्ष एक
1: हम अनेक किंतु एक
0: तो बच्चों, कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
6: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे।

0: बहुत अच्छे, तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
1: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है। असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊं, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों, हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं? तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या
3: हाँ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है?
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के?
2: साथियों ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से

0: पासरश देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पोत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
1: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
0: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
2: चल मार्च! दस! चल!
1: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वह एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
0: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
0: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैग टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
1: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
0: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
3: कैसे वो लोग ऊंचाई पर लोग
4: साथियों, बिल्कुल ठीक है। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
3: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है।
5: वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
4: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले।

0: हाँ, हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे। बहुत धीरे धीरे, छुपते छुपाते, रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
0: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
1: ठीक है।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
2: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
4: आगे बढ़ो, बच लो, जवाब दो,
2: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
5: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
6: बिल्कुल ठीक,
5: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
3: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था, वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गईं।
1: कार्बाइन खाली हो गई है।
0: अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
3: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
2: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे

0: घर की ओर बढ़े।
1: दुर्गा माता जय।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
2: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
1: भाग रहे हैं, अब कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। हमने साथियों, तुम्हें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
3: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
4: आपको वहाँ ले चलते हैं।
3: वहाँ चलते हैं।
4: गर्म पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
3: आओ भाई जी, नहीं
5: मानसिंह, नहीं मानसिंह,
3: आओ तो सही।
5: चिंता मत करो,
3: मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
4: लेकिन जी, लेकिन
3: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हुआ।
4: अरे
3: आप, तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
4: आप सुनो,
3: छुपा हुआ ना,
4: आप
3: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
4: लेकिन
3: चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
4: लेकिन
3: अरे जाओ
4: आप।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
3: संजय भाई, इधर आओ। क्या जगह था?
5: संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
2: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
6: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: ನಾನು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಉಳಿತಾಯ ದೊಡ್ಡ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ವಾವ್, ನನಗೂ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವರ ಬಿಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು.
9: ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಹರ್ ಪಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್.
10: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕೆ? ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕೆ? ಬನ್ನಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ದನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗೊಂದು ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮ ರೂಪಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಿಬಿಎಸ್ ಬಿ.

0: वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
5: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
4: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
6: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।

0: इज डोमेस्टिक और फॉरेन इन ओरिजिन।
1: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Sairam Mujtaba with the news at 9. The headlines. India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK. Targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate lists by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economist Robert E. Hall and Mike

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra Karyakram mein aapka swagat hai. प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता है, इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें. कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभव रोहतगी.
0: थैंक यू अमित. Benchmark domestic indices decline, Sensex sheds over 500 points, Nifty settles at 22,363. Country's retail inflation rises to 5.54% in September this year, and global crude oil prices rise over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों का नुकसान, निफ्टी 22,363 के

0: And before we give you the economic details, the stories, very important announcement for you, our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार आज कारोबार की शुरुआत में मजबूती के साथ तो खुले, लेकिन शुरुआती बढ़त कायम न रह सकी। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट से 548 अंक गिरकर 71,925 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस फेल्ड टू होल्ड देयर इनिशियल गेन्स एंड एंडेड इन द नेगेटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 548 पॉइंट्स नियरली 0.8% to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points or 0.7% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The Mid-Cap 100 index edged up marginally and the Small-Cap 100 index gained 1.4%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेज ऑन द बीएसई 17 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड डाउनवर्ड। अमंग द टॉप लैगर्ड्स हॉस्पिटल्स शेड 2%, एफएमसीजी फेल ओवर 1.3% एंड पीएसयू बैंक्स ड्रॉप्ड 1%. In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3%, and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined, and shares of 281 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पे दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ नांगली दिल्ली से।
1: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन है, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है। तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो कालाबाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा, मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं? बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए।
1: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
3: जोशी साहब, देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्यौहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहाँ तक सवाल स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए, स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाएंगे, कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी, लेकिन हाँ, उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ़ कीजिएगा, नवंबर के बाद जो है, 15 नवंबर के बाद थोड़ी

0: कीमतों में गिरावट आए।
1: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended after 8 weeks that the market closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
0: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is one of the big problems. So if you see the crude price is almost around $105 yes. a barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arabia. That means the more disruptions possible in the crude oil market. Then there was expectation that inflation is expected to go up, as we have seen that inflation is now 5.54%. And that is giving a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike. Yes. So this was the third one. And the other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks. Yeah. So combination of all the bad news had an impact on the stock market, and market is still looking for some kind of positive news, but unfortunately they are getting nothing, and that is why we are seeing lot of selling pressure in the market.
2: मुंबई से अगले श्रोता के तौर पर रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लड रिलेशन में मैं मेरे लड़के के नाम, मिसेस के नाम पर कर सकता हूँ क्या? ये सवाल है। और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे? ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहे?
0: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं?
1: एक
0: चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफ़र जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है। बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुँच जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेजी दिखेगी। जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में तीन हैं, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा।
0: गुड इवनिंग।
4: हाँ सर, एक सवाल अभी आपसे सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75। अब वो पिछले 3-4-5 दिन से देयर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, विच इज एडिंग टू द कोर इन्फ्लेशन फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय।
0: उनकी
4: सप्लाई तो ऐसे ऐसे माहौल में थोड़ी सी रेगुलर होनी चाहिए।
0: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं, तो जो 5.54% महंगाई के आंकड़े हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे अलावा और भी तीन सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ़ कीजिएगा भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और नींबू

0: की बात करें, यानी कि टॉप फाइव आइटम्स में चार आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति इसकी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। इस बार प्याज की पैदावार में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है। तो मदर डेयरी पे, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहाँ पर उपलब्ध है जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ मैंने देखा है। और बाकी जो जिसको कहते हैं ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी, वो भी चल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है, वहाँ से नई फसल जल्दी ही बाजार में आएगी। तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं।
1: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
0: और नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है।
2: जी
1: जी शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में ट्रिगर नहीं है कच्चे तेल की कीमतों ने, उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटिमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है। क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, हम कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहाँ से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा, या बाजार को वहाँ से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
0: देखिए, पॉजिटिव तो वहाँ से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है, और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है
2: जी।
0: ब्याज दर बढ़ती है तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक में ही पैसा रखो, या ऐसे जगह पे रखो जहाँ आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है, और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी ऊँची है, और भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है, अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है। अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे। दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आती है।
2: शिशिर, यू नो अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ triggers, but before I come take my question to you, we have the next caller with us online. Nitin is calling us from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: Namaskar ji.
2: Namaste. अपना सवाल पूछे।
3: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया ना कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में 1 साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, 1 साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड आएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे, तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनो के, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे तो उस सिक्के को हम सेल करेंगे, तो जो वैल्यू हम लाएंगे तो उसके बाद वो हमसे रिटर्न में लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरेते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं, तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है, और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे खरीद लिया है, तो 1 साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी।
2: शिशिर, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं, जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं।
0: मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला, आपने अगर 1 साल के लिए ब्याज के लिए 1 साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है, और वहां पर आपने 1 साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपने देखा होगा कि आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको 1 साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो 3 महीने 6 महीने की बात नहीं, अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद पूरी होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा। तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर

0: और उसे बेचना बेचने जाते हैं, तो किसे आप बेच रहे हैं? किसी एक संगठित जगह पे बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं? और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पे जाते हैं तो आपको नगद तो मिल जाता है जो उस समय आपके भाव है। गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आपको उससे कम मिले भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं।
1: जी, सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट एज यू नो अमित वाज सेइंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, it's, they are not getting positive triggers from anywhere, but for an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because there's a, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices in the stock market share prices, and so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
0: certainly, because market always needs money as well as the patience. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
1: Yes.
0: So what happens that when there is a correction in the market, we saw, oh, we are going to lose everything. But those are the, I mean, something, most of the time it is the notional loss.
1: Yes.
0: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stake at a stock at a very low price, that's really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
1: Yes.
0: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices. And you should also have some money put into the mutual fund.
1: Yes.
0: And apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold, that would be really good.
1: Right.
2: अगले श्रोता के तौर पे महाराष्ट्र से के शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: मेरा क्वेश्चन ये था कि टीयर टू जो सिटी है, मतलब टीयर वन में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या बड़ा सिटी, वहाँ बंदरगाह होता है, पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत ज्यादा होता है। टीयर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
0: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और आपको एक चीज़ बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट हम आपको बताएं कि आईटी कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पर खोले हैं जहाँ पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहाँ पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहाँ पर खोले हैं। तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई है या फिर वहाँ पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है। तो आप अगर छोटे शहर में हैं या मझोले शहर में हैं तो वहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
2: शिशिर, अगर रुपये की स्थिति पर आते हैं, रुपये ने तकरीबन आज 1 रुपये के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी, हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद सीआरआर रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं।
1: सीआरआर रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने।
0: देखिए, अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी यह असर कुछ समय तक बना रहेगा।
2: और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में
1: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated to 5.54% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83% recorded in August. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas increased to 6.08%, while in urban regions it rose to 4.88%, and food prices continue to remain a key driver of inflation. A very brief comment from you.

0: Anubhav, just one thing. It's a median target rate of 4%, which we have breached. In fact, that was breached last month itself. Now, the concern is that if it exceeds 6%, then there will be a bigger problem. So, and as of now, we are expecting that it will breach.
1: It will breach.
2: Delhi se Shri N.P. Singh hamare saath maujood hain. Ji,
3: sir, good evening to the all panelists. I just want to know that if the it's about UPI. If the UPI amount is 3,000 and we divide the payment into 2,000 and 1,000 in two times, so then also it will attract the, you know, the surcharge.
0: If it is less than 2,000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2,000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2,000 rupees and 1,000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course it will. 2,000, for the 2,000 rupees, it will, because 2,000 or more. So it will attract MDR. But please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer. It is a shopkeeper who has to pay at the time of getting money from the bank or the institutions.
2: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है. यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है. भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसपीआई के एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया. हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही. इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया. हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए. इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं. जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
4: हेलो सर, नमस्ते.
2: नमस्ते
4: सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ. मेरे दो सवाल है. पहला सवाल ये, मेरी एफडी बनी हुई है, तो उसमें एक साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया. तो दूसरा सवाल, जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट करा है अभी, तो गोल्ड जैसे एफडी का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या एफडी में ही हमें बने रहना चाहिए? और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
0: देखिए, आपकी शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना है, उसी शर्त पे भुगतान होगा. ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है. रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज़्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही, तो आपको नुकसान होगा.
1: And let's move on to the next story. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Mike Woodford for developing microeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments and central banks' ability to respond to economic fluctuations. The Nobel Committee said the economists developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
5: Yeah, my quick question to Market Mantra team and sir is, sir, जो भी गलत हो सकता था वो शायद इंडिया हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है. अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो have we touched the rock bottom? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आपका क्या ओपिनियन? रिबाउंड
0: बाजार कितने स्तर पे जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां.
1: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर डबलिंग इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड बाय 2030. मिस्टर गोयल सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द बिजनेस प्लीनरी अंडर द 16th सेशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक and Trade Committee in New Delhi today. The minister called upon businesses in both countries to translate the opportunities created by the India-UK

0: 20,295 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में अगर दोनों चीज़ों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नज़र आ रहा है।
1: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमज़ोर होगा। और कच्चे तेल की जहां तक बात करें, सऊदी अरब और उन जगह पर हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने, मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते।
0: जी शिशिर, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और अब चलते चलते एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363। कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.54% इन सितंबर दिस ईयर। And global crude oil prices rise over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

11:40 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है गीत मेरे मनमीत और आज आपके संग है अर्पणा। शुरू करते हैं गीत मेरे मनमीत के लता जी की आवाज के साथ। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, और इसके बाद किशोर कुमार की आवाज होगी और आनंद बख्शी का लिखा गीत होगा, आर डी बर्मन का संगीत होगा, फिल्म का नाम है अलग अलग। तो बैक टू बैक इन दो फिल्मों का आप गीतों का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ गीत मेरे मनमीत में।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों. अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, और संगीत जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है. गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, दो रास्ते फिल्म से ये गीत होगा. इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार. अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए भी सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं। इनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। एस्टोनिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में एस्टोनियाई संसद भवन रीकी कोगू में पद की शपथ ली। उन्होंने श्री अलार कारिस का स्थान लिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है जीने की राह।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। ये जो यादें होती हैं ना, उनमें से कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी तारीख की, किसी मौके की जरूरत नहीं होती। जैसे एक खुशबू, एक गीत और एक मौसम। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनसे कि अगर कोई भी अच्छी याद जुड़ी हो तो पूरा का पूरा अतीत सामने आ जाता है, एक तस्वीर बन जाती है। बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू भी कभी कभी किसी पुराने आंगन तक ले जाती है। और यादों की तो अपनी कोई घड़ी भी नहीं होती, वे जब आती हैं तो अपने साथ पूरा समय लेकर आती हैं। कभी मुस्कुराहट देती हैं, कभी आंखें नम कर देती हैं, लेकिन हर याद का मतलब लौटना नहीं होता। कुछ यादें हमें ये भी बताने आती हैं कि हमने कभी किसी पल को पूरी शिद्दत से, बहुत प्यार से जिया था। इसलिए आज जो याद आए उसे प्यार से याद कीजिए और फिर उसे उसकी जगह रहने दीजिए और रात को आगे बढ़ने दीजिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है हमशक्ल।

जैसे यादों की कोई घड़ी नहीं होती, वैसे ही जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो अक्सर शब्दों में नहीं कही जाती। अगर शब्दों में दिल की बातों को बांधने की कोशिश करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो या तो किसी गीत की धुन में उतरती है, या किसी खुशबू में लौट आती है, या अचानक किसी पुराने नाम के साथ यादों में उतर जाती है। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये भी थोड़े अजीब से होते हैं। इसे जितना हम छिपाने की कोशिश करते हैं उतने ही भीतर से गहरे होते चले जाते हैं, और रात उन्हें आवाज देकर बहुत पास बुलाती है। शायद इसलिए देर रात सुने गए गीत, देर रात कही गई कोई बात सीधे दिल पर दस्तक देती है। दिन हमें व्यस्त रखता है और रात हमें संवेदनशील बनाती है। तो आज अगर आपका भी दिल आपसे कुछ कहना चाहता हो तो उसे रोकने की कोशिश जरा भी मत करिए। उस हर एक भावना का, हर एक सेंटिमेंट, हर एक इमोशन का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। बस उसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी रात जो खुद के साथ गुजारनी होती है उसकी जरूरत होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अगला गीत फिल्म मन की आंखें से आपके लिए।

और आज निशिगंधा में जब हम बात कर रहे हैं रात की, मन की और रात के संगीत की, यादों की, तो फिर एक और बात याद आती है जो सीधे रात से जुड़ी हुई है। रात दिन की थकती हुई कहानियों का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलने का सबसे खूबसूरत वक्त है। जब शहर की आवाजें कम हो जाती हैं, तब भीतर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। किसी को नींद की तलाश है, किसी को किसी के अपने की याद की तलाश है। किसी के पास यूं तो कहने को बहुत कुछ है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बिल्कुल खाली है। और रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अनजान लोगों के बीच भी बहुत सारी कहानियों के साथ उपस्थित रहता है। तो इस रात अपने लिए कुछ पल जरूर संभाल कर रखिए और कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। आज की रात ये कहती है कि आप अपने आप को महसूस करना सीखिए, खुद के साथ ठहरना सीखिए। और हमारा FM गोल्ड यानी कि ये रेडियो स्टेशन जो हमारे मन का रेडियो है, ये सबके साथ ठहरता है, आपसे आपकी बातें आप तक भी पहुंचाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निशिगंधा। निशिगंधा के बाद हमारे और भी कार्यक्रम होंगे। फिलहाल सुनते हैं एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

ये जो रात की चाय होती है ना, जी हाँ रात की चाय, बात जब रात की हो रही है, रात की यादों की हो रही है, तो रात की चाय को कैसे भूल सकते हैं। जो रात की चाय होती है ना, वो जाने क्यों दिन भर की बातों में घुल जाती है। पहली चुस्की जैसे कहती है, अब थोड़ा और अपने पास लौटो, और कभी इसी प्याले के साथ किसी का इंतजार किया था, याद है। मोबाइल की स्क्रीन बार बार देखना और फिर खुद ही मुस्कुरा देना, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। कभी कोई सामने बैठा होता था और चाय ठंडी हो जाती थी, पर जनाब बातें नहीं थमती थी। आज वही प्याला अकेला है, मगर स्मृति अब भी गर्म है। शायद चीजें नहीं, उनसे जुड़े हुए पल हमें बार बार आकर छू जाते हैं। इसलिए अगली बार अगर चाय बनाइए जनाब, तो जल्दी जल्दी मत पीजिएगा। एक घूंट बीते कल के नाम और एक आज के नाम जरूर रखिएगा, और आखिर

चुस्की उस व्यक्ति के नाम रखिएगा जिसने कभी आपकी साधारण सी शाम को भी बेहद खास बना दिया था, क्योंकि स्वाद जो है वो जीभ से उतर जाते हैं लेकिन बातें और यादें सीधे जाकर स्मृति में घुल जाती हैं, बस जाती हैं। और ये जो बातें हैं ना रात के साथ, ये बार बार याद आकर मन के दरवाजे पर हौले हौले दस्तक देती रहती हैं। और अब अगला गीत निशिगंधा में मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरे सनम।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि फिर थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाएं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतर खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने कल सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो आप पहला गीत सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये बातें हमने कई बार की हैं कि प्रेम को लिखना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। प्रेम की व्याख्या को शब्दों में बांधना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम और या फिर सबसे आसान काम। प्रेम कभी किसी अनुबंध की पंक्ति में नहीं होता, वह तो उस सुगंध की तरह होता है जो फूल से अनुमति नहीं मांगता, फिर भी उसके साथ बना रहता है। उसका जन्म किसी नियम पुस्तिका में नहीं, बल्कि मन के अंदर धड़कते हुए विश्वास में होता है, जहां देना किसी गणना का विषय नहीं रहता। और ये प्रेम जो है ना, जब कर्तव्य का वस्त्र पहन लेता है तब मुस्कुराहटों पर एक अदृश्य बोझ उतर आता है। हम साथ तो चलते हैं, किंतु उनकी ऊष्मा धीरे धीरे अनजानी होने लगती है। नेत्र मिलते हैं पर उनमें वह आद्र चमक नहीं उतरती जो बिना कहे समूचा आकाश पढ़ लेती थी। कर्तव्य आवश्यक है पर जीवन व्यवस्था संभालता है, घर को आकार देता है, रिश्तों को आधार देता है, किंतु प्रेम केवल आधार पर नहीं टिका करता। उसे चाहिए एक सहज स्पर्श की निष्कपटता, एक प्रतीक्षा की मधुर लय, एक स्मरण की भीगी गर्माहट और वह अपनापन जो किसी कारण का मोहताज नहीं होता, जहां प्रत्येक स्नेहिल व्यवहार सिर्फ इसलिए निभाया जाए कि निभाना आवश्यक है, वहां भावों की धरती धीरे धीरे बंजर होने लगती है। और अब अगला गीत, फिल्म का नाम है जीने की राह, आवाज है मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है कभी कभी।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। मैंने तुम्हें किसी गुलदान में नहीं रखा, ना ही किसी चमकते कोने में सजाया, जहां ऋतुएं बदलते ही रंग अपना परिचय खो बैठते हैं। मैंने तुम्हें रखा था एक ऐसे पन्ने के पास जहां अक्षर अभी भी अपने जन्म की गर्माहट संभाले हुए थे, जहां एक अधूरी पंक्ति प्रतिदिन अपना अर्थ बदलती थी और एक विराम चिन्ह पूरे आकाश की जितना

विस्तृत लगता था। कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती। कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती, किंतु मुझे सदैव लगा कि उनका जाना ही उनकी पराजय नहीं होती। कुछ चीजें अपने रंग से नहीं, अपने स्पर्श की छाप से जीवित रहती हैं। इसलिए मैंने किसी उपहार की चमक से अधिक विचारों की रोशनी को चुना, क्योंकि कागज पर दर्ज एक अनुभूति वर्षों बाद भी उतनी ही ताजा मिल सकती है जितनी किसी पहली दोपहर में थी, जितनी किसी पहली दोपहर में थी। और अगला गीत, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है मोहम्मद रफी की।

लौटने की सोचता हूं तो घर याद आता है। जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं तो घर याद आता है। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई।

अभी छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रज मोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए तकनीक और परंपरा को साथ चलना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में निरामयता, दक्षिण एशियाई ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निरामयता व्यक्ति, समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंधों की सभ्यतागत समझ की खोज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रतजगों का क्या होगा, अब मेरे रतजगों का क्या होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है।

ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है। और आज सुरमई में अगला गीत, फिल्म का नाम है आसपास, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। कहां तक उन पर रखें बेरुखे का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखें बेरुखे का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखे का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अगला गीत, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आवाज है उदित नारायण और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अधिकार होगा। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी, फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अगला गीत, फिल्म का नाम है अभिनेत्री, आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं, तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं, चलो फिर बातें भी करते हैं, तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो फिर सुनते भी हैं, चलो फिर सुनते भी हैं, तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है, तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है, मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लोफर।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को

0: और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचार, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया। ये स्वदेशी तकनीक प्रदर्शित करने और उद्योगों द्वारा उनके हस्तांतरण अपनाने तथा व्यवसायीकरण को सुगम बनाने के लिए विवरण सूची अनुसंधान और उद्योगों के बीच की दूरी पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला राष्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the Jet Coal Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, strong

तेरी आवाज़ में मेरी आवाज़ का मिल जाना, जैसे किसी ख्वाब का हकीकत बन जाना। तू एक गीत की पहली सी पंक्ति बन जाए, मैं उस गीत का हर लफ्ज़ गुनगुनाऊं। नमस्कार दोस्तों, रात के इस सुहाने पहर में मैं अर्चना गोयल आपका स्वागत करती हूं। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम हमराही में। दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। आज हम अकेले गुनगुनाने वाले गीत नहीं, बल्कि अपनी महफिल सजाएंगे जिसमें दो आवाज़ें हैं या किसी का साथ है। दो दिल हैं, दो एहसास हैं और एक खूबसूरत सी मोहब्बत है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ।

साहिब, बीबी और गुलाम। इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले और सखियों को। क्या आपने कभी ऐसा गीत सुना है जिसमें मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक वादा बन जाती है? प्यार में वादे करना आसान है लेकिन उन वादों को निभाना शायद वही सच्ची मोहब्बत की पहचान है। क्या आपने कभी किसी से ऐसा वादा किया है जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? कोई ऐसा वादा जो सालों बाद भी आपके दिल में उसी तरह महकता है? तो सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

हरियाली और रास्ता फिल्म में ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। मोहब्बत का ये अंदाज भी कितना प्यारा है ना, कभी एक रूठता है तो दूसरा मनाता है, कभी एक शिकायत करता है तो दूसरा मुस्कुराकर उस शिकायत को भी प्यार में बदल देता है। और सच कहें तो रिश्तों में अगर थोड़ी नोक झोंक ना हो तो शायद प्यार की कहानी में कुछ कमी सी रह जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूठने में भी अपनापन है और मनाने में भी सम्मान, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां दोनों एक दूसरे के दिल की कद्र करें।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म सूरज से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।

0: दोस्तों, जिंदगी का सफर अकेले भी तय किया जा सकता है, लेकिन किसी अपने का साथ मिल जाए तो मुश्किल रास्तों पर भी चलने का हौसला आ जाता है। एक अच्छा हमसफर वो नहीं जो खुशियों में आपके साथ हंसे, बल्कि वो है जो आपकी खामोशी समझे, आपकी थकान को समझे और बिना कहे ये एहसास दिला दे कि आप अकेले नहीं हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग अनजान रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मंजिल का पता पूरी तरह नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। रास्ते की अनिश्चितता अब उन्हें डरावनी नहीं लगती, क्योंकि साथ है एक दूसरे का।
1: हुस्न जब जब

रात गहराती जा रही है और इस रात के साथ हमारे गीतों का सफ़र भी और खूबसूरत होता जा रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि रात के समय कुछ गीत दिन के मुकाबले ज़्यादा अच्छे क्यों लगते हैं? शायद इसलिए कि दिन भर की भागदौड़ के बाद रात हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है, उन बातों को याद करने का समय देती है जिन्हें हम अपनी व्यस्तता में कहीं पीछे छोड़ आए थे। ठीक कहा ना मैंने?

जाता है, दूरियों से मिट जाता है प्यार, कभी कभी फासलों में भी कमाल होता है। और वह एक ऐसा गीत जिसमें सुरों की मिठास के साथ प्रेम की एक नर्म सी दुनिया बसती है। सुनिए और महसूस कीजिए उस पुराने सिनेमाई रोमांस को जिसका जादू आज भी कम नहीं हुआ। लव मैरिज फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

दोस्तों, हर बात को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी की आंखों में देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। कभी मुस्कान बता देती है कि दिल में कोई खास जगह बना चुका है, और कभी एक नजर इतनी गहरी होती है कि याद बरसों

तक चलती है। मोहब्बत का यही तो जादू है जो साधारण से पलों को भी असाधारण बना देता है। जो रिश्ते दिल में बसते हैं उनमें दिखावे से ज़्यादा अहमियत सच्चाई की होती है। आइए सुनते हैं ऐसा युगल गीत जो अपने सहज रोमांस और मधुर धुन के कारण आज भी दिलों में है।

हो तुम, कुछ ना कहेंगे हम। देखते ही देखते ये संगीतमय रात बहुत खूबसूरती के साथ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आज हमने उन गीतों को याद किया जिसमें दो आवाजें थीं, लेकिन एहसास एक था। ऐसे गीत जो हमें बताते हैं कि प्रेम केवल कहने की चीज़ नहीं, बल्कि हर दिन निभाने का नाम है। रात ढले तो यादों का कारवां निकले, दिल से दिल तक प्यार का रास्ता निकले। गीत खत्म हो, धुने खामोश हो जाएं, मगर दिल में मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे।

और अब इस गीत के साथ ही अर्चना गोयल आपसे विदा चाहती है कार्यक्रम हमराही से। 4:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अब वक्त हुआ है समाचारों का, ये सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत

0: की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु पुदुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
3: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आप सभी को सुबह की पावन बेला में बहुत बहुत नमस्कार। एक नई सुबह, एक नया दिन, नई उम्मीदें और जीवन को एक बार फिर से खूबसूरती से जीने का एक नया अवसर लेकर हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आज की इस सुबह हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे माँ दुर्गा

आज नवरात्रि का पावन अवसर है। चारों ओर भक्ति का वातावरण है। कहीं माँ के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं मंदिरों में आरती हो रही है, कहीं घर के आंगन में दीपक जल रहा है, तो कहीं कोई भक्त आंखें बंद करके बस इतना कह रहा है, हे माँ मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहते भी हैं जब भी मन के आंगन में अंधेरा छा जाता है, माँ का नाम लेते ही विश्वास लौट आता है। राहें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, माँ का आशीष हो तो हौसला बढ़ जाता है।

माँ दुर्गा ये नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। एक और माँ का ममतामयी स्वरूप जो अपने बच्चों को स्नेह से संभालता है और दूसरी ओर उसका दुर्गा स्वरूप जो अन्याय और बुराई के सामने अडिग होकर खड़ा रहता है। माँ हमें सिखाती है प्रेम करना भी शक्ति है और गलत के विरुद्ध आवाज उठाना भी शक्ति है। दूसरों के आंसू पोंछना भी पूजा है और अपने भीतर के डर को हराना भी साधना है।

0: दोस्तों, नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप हमें जीवन का एक सुंदर संदेश देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मां की भक्ति केवल सर झुकाने से उनके में नहीं बल्कि उनके गुणों को जीवन में अपनाने से है। दीपक जलाना ही आराधना नहीं, किसी के अंधेरे में उजाला बन जाना ही सच्ची साधना है।
1: शक्ति दे मां,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और अरुणिमा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:34 और 32 सेकंड।

दोस्तों, पूजा में हम माँ को फूल अर्पित करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हमारे स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है? किसी बुजुर्ग को हमारी 2 मिनट की बातचीत चाहिए, किसी बच्चे को हमारा प्रोत्साहन चाहिए, किसी मित्र को हमारी बात सुनने वाला भरोसेमंद साथी चाहिए, किसी परेशान को सिर्फ इतना चाहिए कि घबराइए मत, मैं आपकी बात समझने की कोशिश करता हूँ। यही है असली पूजा।

क्यों ना आज एक छोटा सा संकल्प लें, हम किसी की आलोचना करने से पहले उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रियजनों को केवल उनकी कमियां नहीं बताएंगे, बल्कि उनकी अच्छाइयों की सराहना भी करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने प्रति भी थोड़े दयालु बनना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर गलती के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना है।

के इस कार्यक्रम में हम कुछ पल अपने मन के नाम करते हैं। यदि आप इस समय किसी शांत स्थान पर बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए और सहज भाव से मन ही मन माँ का स्मरण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर विश्वास का दीपक जल रहा है। ये दीपक आपको याद दिलाता है कि आप हर परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब समय है आज की इस सुंदर और भक्तिमय सुबह को विदा कहने का। आज अरुणिमा में हमने माँ की महिमा को याद किया, उनके स्वरूपों से मिलने वाली प्रेरणा पर बात की और समझने की कोशिश की कि सुबह की सकारात्मक सोच किस प्रकार हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है।

माँ का नाम हो होठों पर, मन में नया उजाला, हर मुश्किल से लड़ने का हो अपने भीतर विश्वास, हर सुबह एक नई उम्मीद, हर दिन एक नई उड़ान, माँ की कृपा से रोशन रहे जीवन का हर आयाम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में शामिल होने वाले सभी गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर श्री शाह ने कहा कि ये बैठक आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद कार्यक्रम में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावित होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

0: नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय अब ये तय करेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान अलग अलग की जा सकती है या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। विस्फोट का सटीक स्थान नांगी टकरी क्षेत्र में सतवाल नाकी है, जहाँ से सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल हालिया क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन कर रहा है। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में ओलंपिक चैंपियंस और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. Uttar Pradesh government has provided 493 crore rupees in financial assistance to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstorms and cyclones. In the function organized in Gorakhpur, Chief Minister Yogi Adityanath said, within just 8 to 10 days, the double engine government has made arrangements to provide compensation to the food providers for damage to their crops, houses and livestock. The CM stated that the subsidy is being transferred directly to the bank accounts of over 9 lakh farmers in the state. The Election Commission of India has extended the deadline for filing claims and objections to Maharashtra's draft electoral rolls to 26th of this month. The draft electoral rolls are published on 31st August. According to the revised schedule, the disposal of claims and objections will be completed by 10th of November, while the final electoral rolls will be published as scheduled on 16th November. The Chief Electoral Officer has urged eligible citizens and new voters to use the extended period to enroll, correct existing entries or file objections wherever necessary. India and the European Commission have agreed to strengthen cooperation on carbon markets and the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism, or CBAM. The understanding emerged during a meeting between Power Secretary Pankaj Agarwal and Gerasimos Thomas, Director General for Taxation and Customs Union in New Delhi yesterday. Top officials of India and Iran held talks yesterday and exchanged views on the latest regional and international developments and issues of mutual interest. The Iranian embassy in New Delhi said in a social media post that Secretary of Iran's Supreme National Security

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। सुबह के 5:11 हो चुके हैं और आपके साथ कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुबह की प्यारी सी छटा में आप सभी को एक नई सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी बात से आज की शुरुआत करना चाहूंगी। हर सुबह अपने साथ एक नया पैगाम लाती है, कभी उम्मीद, कभी हौसला, कभी मुस्कान लाती है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, नई सुबह जीवन को फिर से जीने का बहाना लाती है। तो आइए अपनी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं अच्छे विचारों, मधुर संगीत और सकारात्मक भावनाओं के साथ, भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ।

दोस्तों, आपने कभी सुबह के शांत वातावरण को ध्यान से महसूस किया है? जब आसमान धीरे धीरे अपना रंग बदलता है, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं और पक्षियों की आवाजें वातावरण में संगीत घोल देती हैं, तब लगता है प्रकृति हमें कोई सुंदर संदेश दे रही हो। प्रकृति कहती है, ठहरिए, कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने आसपास बिखरी सुंदरता को देखिए।

साथियों, हमारा विचार है कि अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, शुक्रिया से कीजिए। ज़रा सोचिए, सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे पास एक नया दिन होता है, सांसों का साथ होता है, कुछ नया सीखने का अवसर होता है और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की संभावना होती है। फिर क्यों ना हम सबसे पहले उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे पास ही हैं। साथ ही अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे।

चनैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसि बजावत धेनु चनैया जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूत सुहानी और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:27 दोस्तों, सुबह का समय अपने भीतर झांकने का भी समय है। जब संसार धीरे धीरे जाग रहा होता है तब कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताना मन को अद्भुत शांति देता है। प्रार्थना वो भावना है जिसमें हम अपने मन का बोझ हल्का करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेते हैं। आइए कुछ पल मन ही मन ईश्वर को याद करें।